0: 在这里，我干是也得穿我干衣，你我干的。
1: 嗯，阿弟哪的？
0: 阿弟这也就打一打，我可能拉去拉去去这个去的呢。你一旦说我哪里好，你看他那是的，你看是也是一个姐姐提十二岁的个，我看没有了，我看没咋没太提的，太提的。但是花了个钱，那人家的就好像咋个？他是个俺的那个，就那个俺的儿子，那一张他好提的，你好提。但是你那个，我到那个也的，也是两只男人，俺是干个活。
1: 嗯，
0: 干个活你我天哪，你现在这钱呢？啊，我不给你，你看你来，我再看嘞。给我个日那的，我个日那的，一张嘛，我个日。这得钱了，钱了，这一个我咋会这？个里外子的，个那一钱的钱还能堆积？
1: 嗯，
0: 那是不是？这一下那个烂地了，还那干活个玩意，那是你这个地的，还你家这个玩意，那就那个钱的，你那个地方这一地没人去，他自己也吐，也吐，也吐，也吐，他可能地上污染的啥的。他和那些去写啊那些啊，你是哪？但是那好提啊，好提这个大，原来我来你这地方那个开始的，大的，是天天家里个这是的，大的，这提的你是个这是的，你提的你是个这是的，这两大爷写亏没的，写错误的，那还是很亮的，啊，啥都错误跟的，那就。听我说，那啥子也来道理，啊！我看着看，那这个阿婆阿婆的家个嘞，我这你可以别的啥子，我听我说，那啥子来道理？啊！啊！是啊！看你这其他的弟弟往里来了，那些那年来的去提着提着，他听我的，那是干的是那那块花花。
1: 嗯嗯。
0: 啊！你那那个天大个，那是那个提两个嘞。但是我来吃还是那是米的，大的。这是这个谁来谁大的？这些我些吃啊的那个些那这个，咱再看那个一天的，一天个吃的，人家吃啊的光那吃啊啥的，你得看的是那个，这那是那啥的，加那啥的，那是个的。那一我一个吃的啥的，那个那是那是我叫你我。咱那会儿的话，咱这喝个那个料子，哎，再甜了，再这个，哎，再甜，咱一些个甜的，一咱哎，再甜，这没主要是跟那啥子，咱吃的，咱吃的咸，咸是这些一点的，咱现在这吃开这个饿的吃饿了，吃个再苦呀，
1: 嗯，
0: 咱吃个吃，吃个吃的吃，还得吃个吃，好那子的，那是。他太爱个，那他喜欢那的哈，呀，他吃点啥的两个大，他再点一点的，他哎，只是再的，
1: 嗯，
0: 一细的个，然后吃的哎，只快点哎，煮的，这哎拿起来可以一下子的嘞，这煮的，这再煮，这再煮的哎呀，那呀这，这是叫那啥，那啥菜的。这个我也不能让我给他吃个那阿姨，这不我我是我可个阿姨，你不能吃他，你看也他吃他，他吃他，人家吃的还吃，但是人家吃的他我要的。
1: 嗯。
0: 啊，你那那吃这样的，那吃这那吃也是的，哎，吃这那也一点阿里，咱吃五个啦，吃五个兄弟。啊，你这个在接的那的，这车转，这车转，那车转，你刚才这那车子的，这去的话，我这个那换个老起来干这些，干这些，那小的这样的，啊，你那你上午还我到上午，他你这我干那个事的那的，这车转，这车转一点，干。
1: 嗯，
0: 但我接不，那我接都不好嘞，这吃啊，我都是那不，我给我这，我给那阿哥，现在都 বসে সে তাড়িয়ে যাচ্ছে কি আদা দিকে যায় তার ইয়ার গিয়ে গা নাই এর গাড়ি দেখছি ইয়ার যাই দেবে তা তুই খা তার দেখছি না তুই খা তো দেখছি খাচ্ছে খাচ্ছি আর ওই যে থাকবো আরে দিলে আর যারা গেছে না খেয়ে এই হাত যারা গেছে দা করলে দেখছে তা দেখছে একজন দেখছে একজন রাজ্য আর বলেন কি আছে না রাজ্যে না তাই না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রাজ্যে না রা Ja, du må ikke gjøre alle dillene. Jeg er litt sjøen, da sier jeg, og jeg sa. Da er jeg ikke løpet. Jeg kjenner dine. Da er det to jeg kjenner dine. Jeg kjenner dine. Da går jeg ikke sjøen, da er jeg det. Hva, hva, hva. Så jeg er så over. Kalle har noen dager ikke landet i hittet, de har sikt. Så hun har kunnet høyt, så hun litt. Da er noen i hittet, de har sikt. Sonnet, så kan jeg ikke si, er det sånn bare. Da jeg tar ordet, ikke lille, da kan jeg være kjellig, de er det. Sett, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da sier jeg ikke, de er det. Da s